0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारो भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगत गुरु स्वामी श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गो माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।

गोविंद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान को अति पुरातन तथा सनातन बतलाते हैं। वह हर युग में आवश्यकतानुसार स्वयं के प्रकट होते रहने की

श्री भगवान कर्म अकर्म तथा विकर्म की गहनता स्पष्ट करते हैं। वह यज्ञ की महिमा का विवेचन करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं।

श्री गोविंद ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पांडव, अपने हृदय में स्थित अज्ञानी संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर रण के लिए तैयार हो।

0: Pom Adoptabat Yenamaham, Pom Lopamudra Yenamaham, Pom Sekavir Yenamaham, Pom Anantagunagamdhira Yenamaham, Pom Arkavushkara Sevita Yenamaham, Pom Amrtaswarsanila Yenamaham, Pom Adoptabatina Yenamaham, Pom Asadaketa
1: Kaveri ke Kinare Kinare. सुनिए अखिल भारतीय रूपक कार्यक्रम। अनुसंधान, आलेख और प्रस्तुतिकरण H.V. रामचंद्र राव। ध्वनि संयोजन एवं प्रस्तुति सहाय A.R. गोपाल नायक। सुनिए रूपक कावेरी के किनारे किनारे।
0: ओम चंद्र पुष्कर मध्यस्था ये नमः। ओम चतुरानन पुत्रिका ये नमः। ओम चोड़देश जनोद्धार ग्रीष्मकाल प्रवाहिनी ये नमः। ओम चुनचुट्ठेत समानी
2: दक्षिण देश में कावेरी प्रसिद्ध नामी है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ के नीचे उत्पत्ति होती है। कावेरी तुला मास में ऊपर उगती है, बुलबुले ऊपर आती है। उस समय लाखों यात्री गण यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ पीकर चले जाते हैं।
3: हाँ, मैंने भी स्नान किया, तीर्थ पान किया, पर अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस नदी के किनारे किनारे सागर संगम तक जाऊंगा।
4: नमस्कार श्रीमान जी।
3: नमस्कार।
4: आपको इस क्षेत्र का परिचय करा दूं?
3: हाँ,
4: मैं यहाँ का अधिकृत गाइड हूँ।
3: हाँ, मेरे साथ कावेरी नदी के किनारे किनारे चलेंगे।
4: हाँ,
3: आपका पारिश्रमिक मैं दे दूंगा।
4: क्यों नहीं, मुझ में तमिलनाडु के क्षेत्रों में यात्रा करने की इच्छा भी है।
3: अच्छा,
4: एक पन दो काज हो जाएगा।
3: आपने सुना अष्टोत्तर पूजन में एक अंश चोड़ देश।
4: चोड़ देश को जल द्वारा उद्धार कर ग्रीष्म काल में भी प्रवाहित होने वाली नदी है। मंत्रकार ने कावेरी की जीवनदायिनी शक्ति को कुछ ही शब्दों में भर दिया है।
3: अच्छा,
4: चलिए आपको कावेरी की कहानी सुनाएंगे।
3: हाँ।
4: नमस्ते बहन जी।
5: नमस्ते।
4: आप इन्हें कावेरी की कहानी सुनाएंगी?
5: क्यों नहीं, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न कावेरी राजा कवेर की पालित पुत्री थी। उन्हें ऋषि प्रवर अगस्त्य को विवाह में देते समय राजा ने अनुशासन रखा,
6: आप मेरी पुत्री को छोड़कर कभी दूर न हो। आप इस अनुशासन को तोड़ेंगे तो कावेरी आपको छोड़ देगी।
3: तो अगस्त ने अनुशासन तोड़ा होगा?
5: हाँ, विवशता में। एक बार वे वेद शास्त्रों के शास्त्रार्थ में इतने मग्न हो गए कि कावेरी का विस्मरण सा हो गया। जब वे घर आए वह नहीं थी, उसने तलकावेरी के इस कुंड में देहांत कर लिया था।
3: अगस्त जी बड़े व्यथित हुए होंगे।
5: हाँ, वे व्यथित होकर जहां तहां भटकते रहे। फिर इस जलकुंड पर आकर उन्हें पता लगा कि कावेरी यहाँ पर जलमग्न है।
3: अच्छा।
5: उन्होंने कावेरी से बड़ा अनुनय किया।
3: जिसका देहांत हो जाए वो फिर लौटते कैसे?
5: यह ऋषि का प्रभाव था और कावेरी की शक्ति थी। उसका अर्धभाग लोपामुद्रा के रूप में अगस्त्य जी को मिला, शेष अर्धभाग प्रतिवर्ष तुला संक्रमण के अवसर पर यानी अक्टूबर 17 तारीख को नदी के रूप में यहाँ से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु को जीवन धारा प्रदान करता है।
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्री जी आगे बढ़े।
3: कहाँ?
4: यहाँ से ब्रह्मगिरी तक कावेरी गुह्य वाहिनी है।
3: हाँ।
4: यानी छिपकर बहती है।
3: अच्छा अच्छा।
4: वहां से बह निकलती है, ब्रह्मगिरी में भ्रुगुंड महर्षि स्थापित ब्रह्म विष्णु और शिव के मंदिर हैं।
3: अच्छा,
4: फिर हम वहां से कृष्णराज सागर वृंदावन चलेंगे।
3: अच्छा चलें।
4: यह है कृष्णराज सागर। यहां आपको दो व्यक्तियों से मिलाएंगे। मिलिए इनसे। इनका शुभ नाम है श्री कृष्ण। ये यहां के मुख्य अभियंता हैं।
3: नमस्कार।
7: इनदिगे लक्ष्मण तीर्थ मत हेमावती नदीगळु सेरुवा संगम
8: लक्ष्मण तीर्थ और हेमावती के संगम स्थान पर सर एम विश्वेश्वरैया जी की योजना के अनुसार 1931 में बांध बनाया गया। यह मैसूर शहर से 20 किलोमीटर दूर पर है। इस बांध का जलानयन प्रदेश 10,619 किलोमीटर है। यहाँ से सबसे अधिक जल निकास का गात्र 2,90,000 क्यूसेक है। इस बांध का जल ग्रहण सामर्थ्य 48.335 TMC होगा। सिंचाई के लिए बाई ओर विश्वेश्वरैया नहर है और दाई ओर देवराज अरस नहर है। कृषि का क्षेत्र आजकल 1,96,000 एकड़ तक विस्तृत हो गया है। इस नहर के जल से श्रीरंगपट्टन, पांडवपुर, मंड्या, नागमंगल, हेगड़े देवनकोटे, मैसूर और तिरुमकुडलु नरसीपुर तालुक के किसान धान, ऊख आदि की कृषि करते हैं।
3: कितना सुंदर स्थान है, यहाँ का उद्यान भी बहुत सुंदर है।
4: आप यहाँ के फौरों को और बिजली के वर्णमय कांति को देखकर चौंधिया जाएंगे।
3: अच्छा,
4: हर इतवार को और छुट्टी के दिनों में संगीत की लहरों के साथ फव्वारों का जल नृत्य करता है। चलिए फव्वारों का

0: वृंदावन के फूल पौधों के बारे में कुछ बताएंगे?
1: आ गार्डन के तकनते फाउंटेन से उल्कोट्रो
0: इस उद्यान के योग्य फव्वारे बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, बत्तियां लगाई गई, प्रकाश व्यवस्था हुई। इन तीनों का संयोजन यहाँ स्वर्ग सा दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बगल में फलों का एक बगीचा भी है। लगता है कि यहाँ आने वालों को ऐसे फल खाने को प्रोत्साहित करना ही इसका उद्देश्य था। कावेरी के तीर पर फलों के इस बगीचे को बनाने का उद्देश्य मुझे लगता है कि इसके पके फल पानी में गिरे, उसके बीच बहकर तीर प्रदेश के खेतों में पहुंचे और वहां फलों के और नारियल के पौधे उगे।
2: कृष्ण राज सागर और वृंदावन देखकर मुग्ध हो गया। अब तो हम मैसूर वापस आ गए हैं। मैं आपकी बहन श्री डी देवराज से करा दूंगा, वे यहाँ के पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं, यहाँ के मंदिरों के बारे में बताएंगे।
0: अच्छा,
3: रंगनाथ जी की जो मूर्ति इधर है वह कर्नाटक के प्रसिद्ध राजवंश होयसल के जमाने की है। तलकाड़ में भी कई मंदिर है, उनमें श्री वैद्यनाथेश्वर और श्री कीर्ति नारायण प्रमुख है। वे 12वीं शताब्दी के है। कावेरी नदी तट पर सोमनाथपुर में भी एक प्रसिद्ध केशव जी के मंदिर है।
2: अब कहाँ ले चलेंगे? चलिए शिवान समुद्रम। ये देखिए, इस नदी पर ये पहला निर्झर है यानी जलप्रपात। इससे आगे कावेरी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो होगेनकल के पास भी एक प्रपात बनाती है। यहाँ कावेरी इस प्रपात के पास एक द्वीप बना लेती है। प्रपात के दो भाग हैं, गगन चुक्की भर चुक्की। अब आप जिस प्रपात को देख रहे हैं वो गगन चुक्की है।
0: वाह, कितना भव्य! ऊपर से गिरता पानी नीचे पहुंचने तक फुव्वारे उछलता है। न जाने कब से इन प्रस्तर खंडों को वो काटता नीचे गिर रहा है।
2: यहाँ के कार्यकारी अभियंता से मिले तो इस प्रपात की शक्ति का वास्तविक परिचय होगा। ये हैं श्री रेवण्णा जी।
0: नमस्कार।
4: द फॉर्मर महाराजा ऑफ मैसूर विद द असिस्टेंस ऑफ दिस आई मीन ब्रिटिशर्स।
5: मैसूर रियासत के भूतपूर्व महाराजा ने अंग्रेजों की सहायता से 25 साइकिल वाली बिजली कोलार सोना खानों को पहुंचाने के लिए इस जल बिजली परियोजना की कल्पना की। पहला विद्युत उत्पादक यंत्र 1902 में लगाया गया। इस उत्पादन केंद्र का नाम भूतपूर्व मैसूर राज्य के दीवान शीशाद्री अय्यर के नाम पर रखा गया।
0: यहाँ कितने जनरेटर है और इनकी उत्पादन शक्ति क्या है?
5: टोटल यहाँ 10 संयंत्र हैं और इसकी कुल उत्पादन शक्ति 42 मेगावाट है। ये एशिया भर में अपने ढंग का सबसे पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ से बिजली पहुँचाने के लिए कोलार सोने की खानों तक जो लाइन लगाई गई वो समय दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी थी।
2: इस केंद्र का महत्व इसलिए भी है कि बेंगलोर शहर को पेयजल का अधिक भाग यहाँ से जाता है। यह व्यवस्था न होती तो शायद बेंगलुरु वासी करीब 50 लाख की जनता में 60% को जल ही नहीं मिलता।
4: वाटर इज आल्सो बीइंग फेड टू बेंगलोर थ्रू पाइपलाइंस फॉर बेंगलोर।
5: यहाँ से बेंगलोर को पानी भेजा जाता है। पहला चरण तो समाप्त हो गया, दूसरा तीसरा भी हो गया, चौथा बन रहा है।
4: तो फोर्थ स्टेज आल्सो।
2: अब आप मंडा जिले में नहरों के किनारे चलेंगे, यहाँ की हरियाली देखनी हुई।
0: सर्वत्र धान के खेत, कहीं कहीं गुड़ की सोनी सोनी गंध, मेहनतकश मजदूर और किसानों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहटे। कावेरी माता सचमुच माता है। फिर मुझे अष्टोत्तर मंत्र की एक पंक्ति याद आती है, तरंगावली समृद्धि मृदु बालुका शोभायता नाम।
2: कावेरी के तरंगों ने खेतों में भी शस्यों के तरंग भर दिए हैं, यहाँ की मृदु बालुका में भी जीवन भर दिया है।
0: वाह,
2: इसका उदाहरण है मंड्या के पास का एक गांव होड़लू। ये हैं श्री चौड़प्पा जी, भूतपूर्व शासक और मंड्या जिले के एक प्रगतिशील किसान।
6: ईचे विश्वेश्वर कैनाल प्रारंभवाद मेले सिड़ी नाले बंद मेले ಇಲ್ಲಿ

0: ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ
1: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಹರ್ ಕೆ ಆನೆ ಸೆ ಯಹಾ ಏಕ್ ಧಾನ್ ವಗೈರಾ ಕಿ ಖೇತಿ ಹೋನೆ ಲಗಿ ಅಬ್ ಯಹಾಂ ತೀನ್ ಚೀನಿ ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೈ ಆಜ್ ಭಿ ಯಹಾಂ ಕೇವಲ ಏಕ್ ತಿಹಾಯಿ ಜಮೀನ್ ಹಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಕಾ ಲಾಭ ಉಠಾ ಸಕಿ ಹೈ ಆಜ್ ನಾಗಮಂಗಲ್ ಮೇ ಜೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹೈ ಪಹಲೆ ವಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯಹಾಂ ಥಿ ಜಮೀನ್ ಔಸರ್ ಥಿ ಅಬ್ ಸಾಲ್ ಮೇ ತೀನ್ ಫಸಲ್ ಲೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಇಸಿ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಗೌಡಾ ಜಿ ಭಿ ಯಹಿ ಕಹತೆ ಹೈ
2: ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದ
3: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇ ಹಮೇಶಾ ಅಕಾಲ ಪಡ್ತಾ ಥಾ, ಬಾರಿಶ್ ನಹೀ ಕೆ ಬರಾಬರ್ ಥಿ. ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ದೂಸರೆ ಸ್ಥಾನೋಂ ಪರ್ ಬಸ್ನೆ ಜಾತೆ ಥೆ. ಹಮಾರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಥಾ ಕಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಿ ನೆ ಕಾವೇರಿ ಪರ್ ಬಾಂಧ ಬನಾಕರ್ ಇಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಛೇ ತಾಲೂಕೋಂ ಕೋ ಸಹೂಲಿಯತೆ ದಿ.
4: सुना है नहर आने से पहले श्रीरंगपट्टनम वाले मंडिया में लड़की नहीं ब्याहते थे क्योंकि पीने के पानी के लिए बहुओं के सिर पर कलसा रखे मीनों जाना पड़ता था.
5: आपने बड़े ध्यान से सुना.
4: हाँ
5: चलिए हम आगे बढ़ें. कावेरी ने कर्नाटक को सरसद तो बनाया पर जैसे अष्टोत्तर मंत्र को आपने दोहराया इसने चोल देश का जलोद्धार किया. ग्रीष्म काल में भी वहां के बहुत सारे प्रदेश विशेषकर तंजावुर और तिरुचि के क्षेत्रों की शोभा बढ़ाई. इसीलिए तमिल काव्य शिल्पाधिकारम के कर्ता इलिंगो अडिगल ने इसकी महिमा गाई है.
6: तिंगल माले वेणकुडयान सेन्नी सेंगोल अदु ओच्ची गंगे तन्ने पुनर्दालुं पुलवाय वाली कावेरी
7: चांदनी का धवल छत्र ताना है गंगा ने कविता बनकर बह निकली है कावेरी जलधारा ने
6: गंगई तन्ने पुनर्दालुं पुलवादोळिदल कयर्कल नाय मंगई मादर पेरुंगर पेंरु अरिंदेन वाळी कावेरी
7: गंगा की प्रशंसा पाकर भी तू नहीं छोड़ती अपना पथ अस्खलित ब्रह्मचारिणी सदा रही समृद्धि दायिनी.
5: तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक प्रणतार्थी हरन तमिलों की दृष्टि से कावेरी को देखते हैं.
8: तमिल में का शब्द का अर्थ है पूंजोले अर्थात वाटिका. विरी शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना. यह नदी बहते समय सुनहरी अणुओं को लेकर आगे बढ़ने के कारण कावेरी नदी को पुन्नी भी कहते हैं. तमिल काव्यों में कावेरी के बारे में कई उद्धरण प्राप्त है. यथा பட்டினப்பாலை மே வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலைத்தலைய கடற்காவிரி புனல் பறந்து பொன் குழிக்கும் பரகாஹோ நஹோ மைத்தோ பகுதி ரகுங்கி பர்வத் ஷிகர் சே ஜர்த்தி ரகுங்கி சர்சாத்தி ரகுங்கி சோனா பர்சாத்தி ரகுங்கி.
4: அப் ஹம் ஹோகேன் கல் பிரபாத் மேகேதாட்டு சேலம் चिदम्बरम आदि स्थानों को पार कराए. कावेरी नदी के किनारे किनारे चलते चलते बरगरे कुरंगाड़ दुरे तुरपन तुरती पांडी कोड़ीमुड़ी वलंजुड़ी कुंभकोणम आदि शिव स्थलों को भी देख आए.
5: हाँ अब यहाँ के बांध भी देख लेंगे. मेट्टोर जाड़रपाल्यम मोकुंबू और ग्रांड एनिकट भी देख लेंगे.
4: अच्छा
5: हम मेट्रो अणकट देखकर अब मोकुंबू पहुंचे हैं. ये देखिए श्री मुत्तस्वामी मेट्टूर जलाशय के कार्यकारी अभियंता यहाँ हैं. इनसे भेंट कर लें.
4: नमस्कार.
9: मेट्रो डैम विथ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 93 टीएमसी द मैक्सिमम हाइट इज 120 फीट.
10: मेट्टूर बांध की ऊंचाई 120 फुट है. इसका जल संग्रहण सामर्थ्य 93 टीएमसी है. चूंकि इसको बनाने वाले इंजीनियर का नाम स्टैनली था इसको स्टैनली जलाशय भी कहते हैं.
5: हमने सुना है कि ईसवी सन दूसरी सदी में कावेरी पर कोई बांध बनाया गया.
9: दिस कावेरियम इज हैविंग दिस ग्रैंड एनिकट बिल्ट बाय करियल चोला एंड देयर इट
10: कावेरियम पर ग्रैंड एनिकट है. इसको करिकाल चोला ने दूसरी शताब्दी में बनाया था. यहाँ कावेरी के तीन भाग हैं. कावेरी वेन्नार और ग्रैंड अनेकट नहर. तीसरा मानव निर्मित है ग्रैंड अनेकट नहर. इसको 1933 में बनाया. इस जिले में 36 उपनदियां हैं.
4: वहां नदी के पार पर आप सीधे देखिए
11: दक्षिण की ओर
5: देख रहा हूँ और आपका इशारा भी समझ गया।
12: हाँ।
5: यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर जो मंदिर का गोपुर है वो यहाँ से भी दिखाई पड़ता है। चलिए वही चलें, वो श्रीरंगम के मंदिर का गोपुरम है। पहले यहाँ के प्रधान आचार्य श्री रामानुज परंपरा के गुरुवर जी पुंडरीकपुरम आश्रमम श्रीमत आंडवन स्वामीगढ़ से मिल लें।
12: स्वामी जी, आप श्री रंगनाथ स्वामी जी के बारे में कुछ कहें।
13: अयोध्यातः रामाराधितः श्री रंगनाथः कावेरी मध्ये श्रीरंगाख्ये प्रणवाकार विमाने सदा शयानो वर्तते।
5: और कावेरी के बारे में?
13: अस्माकं पाप निवारण पूर्वकं पावनत्वेन उपनिषद प्रसिद्धासु नवसु नदीषु कावेरी अन्यतमा।
5: स्वामी जी का आशय है पाप निवारण करने वाले उपनिषद में प्रसिद्ध नौ नदियों में कावेरी का विशेष स्थान है।
13: अस्याः प्रभावं तुला कावेरी पुराणं विशेषतः वर्णयति। कावेरी तोयमाश्रित्य वातो यत्र प्रवर्तते तद्देशवासिनां मुक्तिः किमु तत्तीरवासिनां।
5: वाह, कावेरी पर बहने वाली वायु जिन जिन देशों पर चलती है वहां के लोगों को मुक्ति मिल जाती है, फिर उसके तट पर निवास करने वाले लोगों का क्या कहना।
12: नमस्ते स्वामी जी, अब हम श्री रंगनाथ के दर्शन कर लें।

0: कैसी भव्य मूर्ति है! ऐसी सुंदर मूर्ति को जो ना देखे उसका जीवन ही व्यर्थ है।
1: आपने ठीक कहा, शायद इसीलिए इस मूर्ति को देखकर श्रीपाद राय की जिह्वा से तत्काल निकला था, गंगलिर्द्यातको कावेरी रंगना नोड़दा। वे आंखें ही क्यों जिन्होंने श्री रंगनाथ की मूर्ति को न देखा हो।

0: हाल ही में यहां इस मंदिर पर 236 फुट ऊंचा गोपुरम बनाया गया।
1: इसी गोपुर को हमने मुकुंबू से देखा था।
0: हाँ,
1: लगता है हम तिरुच्ची पीछे छोड़ा है, तंजावर पहुंच गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर मध्ययुगीन कोई लाइब्रेरी है।
0: हाँ, सरस्वती महल ग्रंथालय।
2: दिस इज वन ऑफ द फ्यू मिडिवल लाइब्रेरीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज
3: कंटेनिंग मध्ययुगीन ग्रंथालयों में से एक है। इसमें 45,000 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं। इनमें से बहुत सारे संस्कृत में हैं, 30,000 तो संस्कृत में हैं, बाकी तमिल, मराठी और तेलुगु में हैं।
0: इसकी स्थापना विजयनगर के नायक राजाओं ने करवाई, फिर शिवाजी महाराज के वंशजों ने इसको संरक्षण और विस्तार प्रदान किया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी कावेरी के किनारे वाले मंदिरों में प्रमुख है। यहाँ एक और प्रसिद्ध मंदिर है।
1: कौन सा?
0: बंगारू कामाक्षी का।
1: अच्छा,
0: इसकी प्रसिद्धि का एक दूसरा भी पहलू है।
1: वो क्या?
0: जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर की काली की उपासना करते थे,
1: हाँ,
0: वैसे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियों में एक श्री श्यामा शास्त्री जी भी कामाक्षी के पुजारी थे।
1: कर्नाटक संगीत के तीन मूर्ति संत त्यागराज, मुत्तु स्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, तीनों तंजावुर के थे?
0: दोनों थे ही, पर तीसरे भी यहां से दूर नहीं थे।
1: अच्छा,
0: कुछ ही किलोमीटर के फासले पर एक स्थान है तिरुवाई।

वहाँ उनकी समाधि है। उनकी आराधना हर साल तिरुवयारू में होती है। उस महानुभाव ने अत्यंत विनय के साथ संसार के कितने ही महान भावों की वंदना की थी। आज भी उस पर्व पर महान संगीतज्ञ समूह में गाते हैं।

0: कावेरी के किनारे संगीत और शिल्प कला तो सदियों से समृद्ध बनती रही, पर संस्कृत शिक्षा की धारा भी यहाँ के गांवों में शिष्यों में जलसिंचन के साथ साथ बहती रही। यहाँ कुछ ब्राह्मणों के अग्रहार बने। ऐसा एक अग्रहार है महादानपुर, वहां मेरे एक मित्र हैं श्री राजाराम।
1: यह महादानपुरम में और आसपास के गांवों में ब्राह्मण लोग यजुर, साम, ऋग, वेद अभी भी गाते हैं। कावेरी हमारे लिए केवल जलधारा नहीं किंतु जीवन दात्री है। अगर इसका जल इस क्षेत्र को नहीं मिलता होता तो यहाँ की जमीन बंजर हो जाती। यहाँ जो हरियाली दिखती है वह नहीं होती। यहाँ के जीवन में संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होता।
2: यहाँ अब भी संस्कृत के विद्वान रहते होंगे।
0: यह है श्री राधा कृष्ण, यहाँ के ITA के संचालक। इतिहास के प्राध्यापक थे पर उसे छोड़कर पारंपरिक जीवन में ढले हैं।
3: पुण्यतीर वासात सद्गुणाः पापक्षयं पुण्यलाभः प्रवर्तते। जाह्नवी तीरे तीरात्र वासात यामुने भांजरात्र वासात पापक्षयं पुण्यलाभः किंतु सद्यपुनाद कावेरी पापमा मरणांतिकम्।
0: जिस प्रकार कर्नाटक में कावेरी मंड्या जिले में हरित क्रांति लाई, उसी प्रकार तमिलनाडु में तंजावुर तिरुचिरापल्ली जिलों में कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। विष्णुपेट के प्रगतिशील किसान श्री एस वेणुगोपालन कहते हैं,
4: एंग ग्राम कल्याण कड़क त्रिवारोटल 10 मील
5: यह गांव तिरुवायूर के पूर्व में 10वें मील पर है। इसका नाम विष्णुपेट है। उस जमाने से यहां कृषि मुख्य पेशा रही है। विष्णुपेट एक जमाने में अग्रहार रहा। तब वेद पढ़ाने वाले पंडित कृषिक भी थे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल हम 1 हेक्टेयर में 9 टन धान पैदा करते हैं और इसीलिए हमारा गाँव विष्णुपेट की जगह 9 टन गाँव कहलाता है।
0: कावेरी के किनारे लालगुड़ी एक गांव है, वहां के प्रगतिशील किसान कनक सभे से आपको मिला देंगे।
6: The Kaveri is a very important river that is running in our Tamil Nadu.
7: कावेरी तमिलनाडु में एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है। तमिलनाडु में विशेषकर तिरुची और तंजावुर जिलों में सिंचाई के कारण अच्छी कृषि होती है। यहाँ केवल तमिलनाडु के लिए ही नहीं सारे भारत के उपयोग के लिए धान पैदा करते हैं।
2: अब आप यहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमको?
0: कावेरी जहाँ सागर में मिल जाती है वहाँ जाने से पहले तंजावुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक श्री डी बालसुब्रमण्यन से मिल लेंगे।
8: In the year 1934, the metro dam was constructed and also GA canal was introduced.
9: 1934 में

0: मेट्रो
1: कंट्री
0: बनाया गया,
1: क्रॉप्स और
0: ग्रैंड
1: रिस्ट्रिक्टेड
0: नहर भी बनी।
1: फोर टू फोर
0: इससे पहले 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर में कृषि होती थी। 1934 से पहले यहाँ वर्षा पर आधारित कृषि होती थी, अब यहाँ धान की खेती होती है। 1960 के बाद साल में 2 फसल लेने का क्रम चला, क्योंकि नहर के द्वारा जल की आपूर्ति का भरोसा हो गया।
2: तो हमारी यात्रा तल कावेरी से शुरू हुई और अब अंत होगा
3: पुम्फुहार पर, जहां कावेरी सागर में समा जाएगी।
2: हमने कावेरी के उद्गम को देखा तल कावेरी में, जहां केवल पानी का एक छोटा सा स्रोत था। उसका विशाल पात्र देखा मोकुम्भ में, श्रीरंग में। अब यहां कावेरी एक पतली धारा बने।
3: श्री नागराजन अपनी पुस्तक कावेरी में कावेरी के सागर संगम का यो वर्णन करते हैं।
0: बहुत पहले कावेरी माँ से मिलने को आतुर एक किशोरी के समान दौड़ लगाती, इसके वक्ष से लग जाती। किंतु आज समुद्र पीछे हट गया है और कावेरी एक पतली सी धारा बनकर बालू का राशि में से जगह बनाकर समुद्र की ओर बढ़ती है। इस दशा में उस गरिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते।
4: कावेरी के किनारे किनारे अखिल भारतीय रूपक माला में कावेरी पर आपने ये रूपक सुना। इसका आलेख तैयार कर प्रस्तुत किया H.V. रामचंद्र राव ने। प्रस्तुति सहायक थे A.R. गोपाल नायक, इसमें अनिल कुमार, अहमद जलीस, मिलन सर अहमद, शिवशंकर कणाजनवर, B.R. रत्नमाला और चंद्रिका ने भाग लिया। आकाशवाणी के तिरुचनापल्ली और मैसूर केंद्र की सहकारिता में निर्मित ये रूपक हमारे बेंगलुरु केंद्र की भेंट।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि परम पिता ब्रह्मा के आदेश से प्रजापति दक्ष ने देवी वीरुणी से विवाह किया। इन दोनों के दैहिक संबंध द्वारा सृष्टि में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर ब्रह्मा जी के ही आदेश पर दक्षराज ने 3000 वर्ष तक मां शिवा की आराधना की। मां शिवा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वो दक्ष पुत्री सती के रूप में अवतार लेंगी। देवी सती के बड़े होने पर ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों ने रुद्र रूपी शिव से अनुरोध किया कि वे देवी सती को अपनी अर्धांगिनी बना लें। जन कल्याण को दृष्टि में रखते हुए महादेव उनकी बात मान गए, परंतु एक बार अपने कथन पर संदेह करने के कारण उन्होंने देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: विप्रवर सूद जी, रुद्र सती वियोग का ये प्रसंग तो बहुत दुखदाई था।
2: महाभाग शौनक जी, दुख की पराकाष्ठा होना तो अभी शेष थी।
1: पराकाष्ठा? सूत जी, आप ही ने तो बताया था कि इस घटना के बाद भी रुद्रदेव तथा सती ने वैवाहिक धर्म का निर्वाह किया।
2: ये सत्य है। दीर्घ काल तक कैलाश पर निवास करते हुए वे दोनों जग कल्याण के कार्य करते रहे।
1: तो फिर आप दुख की किस पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं मुनिश्रेष्ठ?
2: देवी सती के आत्मदाह की।
1: क्या, देवी सती ने आत्मदाह कर लिया? परंतु क्यों?
2: कथा विचित्र होने के साथ साथ लंबी भी है। एक बार गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया के साथ विहार कर रही थी।

0: क्यों तुम पर्वत शिखरों को छूकर आते, पवन के ये झोंके देह को ही नहीं आत्मा तक को विभोर कर रहे हैं।
1: हाँ देवी सती, कैलाश का वातावरण ही कुछ ऐसा है। यहाँ के मन मन बयार का स्पर्श पाते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है।
0: सखी विजया, ये विशाल गगन चुंबी वृक्ष इस बयार में देखो कैसे झूम रहे हैं। ऐसा लगता है

0: वातावरण ही कुछ ऐसा है, यहाँ के मन मन बयार का स्पर्श पाते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है।
1: सखी विजया, ये विशाल गगन चुंबी वृक्ष इस बयार में देखो कैसे झूम रहे हैं। ऐसा लगता है पक्षी भी आनंदित हो रहे हैं।
0: अरे लगता है अपने प्रिय से विलग हो ये पपीही उसे ढूंढती फिर रही है।
1: मानसिक रूप से विलग तो मैं भी हो गई हूँ अपने प्रियतम से।
0: हाँ, आपने कुछ कहा देवी सती?
1: नहीं सखी विजया, मात्र एक विचार कौंड गया।
0: अरे ये चंद्रदेव एकाएक गतिमान कैसे हो उठे?
1: सखी, चंद्रदेव और रोहिणी इस रात्रि काल में कहाँ जा रहे हैं?
0: पता नहीं देवी।
1: जा, शीघ्रता से जाकर पूछ कर तो आ।
0: अभी आई सखी। चंद्रदेव, चंद्रदेव, चंद्रदेव, तनिक रुकिए तो चंद्रदेव।
2: कहो विजया, क्या बात है?
0: देवी सती की जिज्ञासा है कि आप शीघ्रता से देवी रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं?
2: क्या दक्ष पुत्री को नहीं ज्ञात कि उनके पिता दक्ष कल से महायज्ञ करने जा रहे हैं? मैं और रोहिणी उन्हीं के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और रोहिणी, विलंब हो रहा है।
0: देवी, देवी, महादेवी, दक्षराज ने एक महायज्ञ आयोजित किया है, चंद्रदेव और देवी रोहिणी उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
1: क्या, पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इसकी सूचना तक नहीं भेजी? अवश्य ही कहीं किसी ने त्रुटि कर डाली है। चलो महेश्वर से पूछती हूँ। विजया आओ सखी, चलो।
0: आइए आइए देवी।
1: ओ, स्वामी तो नेत्र बंद किए ध्यान मग्न है।
3: बारे सते
1: जी, देवाधिदेव।
3: इतनी उद्विग्न क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या संशय है?
1: देवाधिदेव, मेरे पिता कल से एक महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं।
3: हमें ज्ञात है देवी।
1: आपको ज्ञात है, तो इसकी सूचना आपने मुझे क्यों नहीं दी? क्या मानसिक विलगाव के कारण मैं इतनी तुच्छ हो गई हूँ?
3: सत्य, मन में ऐसी शंका मत लाओ। देवी, हमें उस यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
1: देव, दक्षराज मेरे पिता और आपके श्वसुर हैं, क्या इतना ही उनके यज्ञ में भाग लेने के लिए पर्याप्त नहीं है? अवश्य ही कहीं किसी से कुछ भूल हो गई है।
3: परंतु देवी सत्य, अनामंत्रित किसी के घर जाने से केवल अनादर ही मिलता है, और यह अनादर मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है।
1: तो फिर बताएं प्रभु, मैं क्या करूं?
3: उपयुक्त तो यही होगा भारे कि हम वहां ना जाएं।
1: परंतु क्यों, क्यों मेरे पिता ने आपको, देवाधिदेव को निमंत्रण नहीं भेजा? इसके पीछे उनका अभिप्राय क्या है, ये जाने बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी।
3: तो तुम क्या चाहती हो सते?
1: जब तक मैं आपके इस अनादर का कारण नहीं जान लेती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, पति की अनुमति की आवश्यकता होती है। मुझे अनुमति दे महाप्रभु।
3: ठीक है देवी सती, यदि यही तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं।
4: वृषभराज नंदी।
5: आज्ञा महाप्रभु।
4: आपको महादेवी के साथ दक्ष यज्ञ में जाना है, आप इनका वाहन बने।
5: मेरे अहोभाग्य परमेश्वर,
4: देवी सती का कुशल और इनकी रक्षा का दायित्व आपका होगा।
5: आज्ञा का पालन होगा देव।
4: और देवी सती
1: जी प्राणनाथ,
4: आप एक महारानी की भांति सुसज्जित होकर दक्ष यज्ञ में जाएंगी। मेरे 60 सहस्त्रगण आपकी यात्रा में सम्मिलित होंगे।
1: जैसी आपकी इच्छा प्राणेश्वर।
6: महाज्ञानी शौनक जी, रुद्र आज्ञा से देवी सती ने दक्ष की यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान किया। रुद्रगण प्रसन्नता से रुद्रदेव का जय जयकार करते जा रहे।

0: थे। कितना आनंदमय वातावरण रहा होगा। दक्षराज ने यज्ञ स्थल की ओर आने वाले हर मार्ग पर धर्मशालाएं बनवाई थी। यहां दक्ष के सेवक यज्ञ यात्रियों की सेवा में तत्पर रहते थे।
1: अरे महर्षि दधीच, आप, आपके आगमन से ये धर्मशाला और हम सब धन्य हुए। विराजी महर्षि।
2: प्रणाम ऋषिवर।
3: प्रणाम मुनिवर।
1: मैं अभी आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ।
3: तो आप दोनों भी दक्ष यज्ञ में आमंत्रित हैं?
2: कौन आमंत्रित नहीं है मुनिश्रेष्ठ।
1: ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण सृष्टि ही उमड़ पड़ी हो।
4: ब्राह्मण समुदाय को तो विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।
1: हाँ, उचित भी है। ब्राह्मण ही तो यजमान को यज्ञ फल दिलवाते हैं।
4: और हाँ, ये भी सुना है कि भृगु को ऋत्विज बनाया गया है, वे ही संपूर्ण यज्ञ कार्य संपन्न कराएंगे।
3: जिस यज्ञ के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि हो, स्वयं ब्रह्मा जी वेदत्रय की विधि बताने वाले हों, वहाँ ऋषि भृगु का ऋत्विज बनाया जाना सर्वथा उपयुक्त है।
1: देवराज इंद्र सहित सभी देवगण, लोकपालगण और सभी उपदेवता यज्ञ में भाग लेने आ रहे हैं।
3: अरे पक्षियों का कलरव शुरू हो गया, लगता है भोर हो रही है। हम सबको यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
4: जैसी आज्ञा मुनिवर दधीच।
3: आइए
4: आइए
3: चलिए।
1: लीजिए, हम यज्ञ द्वार तक आ पहुंचे।
5: प्रणाम महर्षि दधीच।
2: प्रणाम मुनिजनो।
3: प्रणाम देखपाल। तो आपको दक्षराज ने द्वारपाल और यज्ञ रक्षक बनाया है।
1: जी मुनि श्रेष्ठ, हमें अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य भी सौंपा गया है। आइए

0: मैं आपको यज्ञशाला की ओर लिए चलता हूँ।
1: चलिए।
2: कितने विशाल और सुंदर भवन हैं चारों ओर।
0: अधिपति दक्ष के विशेष आदेश पर स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया है। यहीं अतिथिगण अपने परिवारों सहित विश्राम करते हैं।
3: अरे वो देखिए, महर्षि दधीचि, देव ऋषि नारद एवं सप्त ऋषि अलग अलग गाथा गान कर रहे हैं।
4: मैं तो यहाँ के वातावरण से रोमांचित हुआ जा रहा हूँ।
0: आइए आइए ऋषिवर दधीचि, यज्ञ मंडप में प्रवेश कीजिए।
1: जी।

0: महर्षि दधी जी, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हुआ।
1: आयुष्मान भव,
2: प्रणाम श्री हरि, प्रणाम विधात,
1: प्रणाम मुनिवर।
0: क्या हुआ मुनिवर, आप चारों ओर क्या देख रहे हैं? क्या कहीं कुछ त्रुटि रह गई है?
2: दक्षराज, मुझे परमपिता और भगवान मधुसूदन तो सपत्नीक दिखाई दे रहे हैं, परंतु रुद्रदेव और देवी सती नहीं दिखाई दे रहे, ना ही उनके आसनों की व्यवस्था दिखाई दे रही। क्या कारण है दक्षराज?
3: उत्तर दो पुत्र दक्ष।
0: मैंने रुद्र को आमंत्रित नहीं किया है।
2: क्या दक्षराज, आपने यज्ञात्मा को ही आमंत्रित नहीं किया और यज्ञ कर रहे हैं? आपने परमेश्वर को आमंत्रित क्यों नहीं किया दक्षराज?
4: और यही प्रश्न करने मैं रुद्र पत्नी सती स्वयं यहाँ आई हूँ।
5: अरे देव,
6: रुद्र पत्नी सती
5: और इस विशाल संख्या में रुद्रगण,
7: क्या होने वाला है?
8: लक्षण अच्छे नहीं है।
9: देवी सती तो बहुत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं।
10: अरे उनके साथ आए नंदीश्वर तथा शिवगणों के नेत्र भी लाल हो रहे हैं।
9: ये तो बहुत अमंगल सूचक है।
4: उत्तर दीजिए पिताजी।
0: मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ, परंतु पुत्री, तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। धर्म प्रतिष्ठित भगवान विष्णु, परमपिता ब्रह्मा, समस्त देवता, महर्षि दधीचि जैसे निष्पाप ऋषिगण यहाँ उपस्थित हैं। जो भी मेरे इस यज्ञ में भाग लेने योग्य है उसे आमंत्रित किया गया है।
9: दक्ष, तुम किस आधार पर रुद्रदेव को अयोग्य घोषित कर रहे हो?
0: विष्णु हरि, वे कुलीन नहीं हैं, उनके न माता हैं न पिता, वे कपाली हैं।
4: परंतु मैं किस आधार पर अयोग्य हो गई?
0: तुम उस कुरूप, भूत, प्रेतों, पिशाचों के स्वामी उस कपाली रुद्र की पत्नी हो।
4: जो भी हो पिताजी, वो मेरे पति हैं, आपके जमाता हैं। समाज में जमाता अति सम्माननीय होता है, उसकी चरण रज मस्तक को लगाई जाती है, उसका स्थान पुत्र से भी उच्च होता है।
0: मैंने रुद्र को कभी जामाता के रूप में स्वीकार नहीं किया।
4: पिताजी, यदि आपके हृदय में रुद्रदेव के प्रति इतना दुराग्रह था तो आपने उनसे मेरा विवाह ही क्यों किया?
0: ऐसा मैंने परमपिता का आदेश पालन करते हुए किया।
3: दक्ष, मत भूलो, हमारे आदेश भी परमेश्वर की ही लीला होते हैं।
0: परमेश्वर की इसी लीला के कारण मेरे सहस्रों पुत्र मुझसे बिछुड़ गए, नष्ट हो गए। मैं

0: की दूसरी लीला आप भूल गए?
1: कौन सी दूसरी लीला?
0: पिताश्री, प्रभु के आशीर्वाद से ही आपको 60 दिव्य पुत्रियां प्राप्त हुई थी। उनकी संतान परंपराओं से ही तीनों लोक भरे पड़े हैं। पुत्रों के माध्यम से ना सही, पुत्रियों के माध्यम से तो प्रजा आपको प्राप्त हुई थी ना?
2: हाँ, ये तो है।
3: देवी सती का कथन सत्य है।
4: अरे दक्षराज को तो उत्तर ही नहीं सूझ रहा।
1: सती, तुम्हारा पति उद्दंड और दुरात्मा भी है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, अभिमानी है, किसी का आदर नहीं करता। स्मरण करो सती, प्रयागराज में होने वाला वो यज्ञ, परमपिता श्री हरि और अपने पति के साथ तुम भी उस यज्ञ में उपस्थित थीं। मुझे संपूर्ण सृष्टि का अधिपति बनाया गया था, वहां सभी ने मेरा अभिनंदन आदर सत्कार किया, परंतु
5: प्रणाम पितामह।
6: तुम्हारा कल्याण हो पुत्र दक्ष।
5: जगदीश, मेरा नमन स्वीकार करें।
6: तेजस्वी भव, आसन ग्रहण करो पुत्र।
5: जी विष्णु देवा।
6: पुत्र दक्ष, ये क्या भ्रष्टता कर रहे हो? त्रिलोक स्वामी परमेश्वर को प्रणाम किए बिना ही आसन कैसे ग्रहण कर लिया?
5: धृष्टता मैं नहीं परमपिता, ये भभूतधारी कर रहा है। सभी देवताओं, ब्रह्मर्षियों, ब्राह्मणों ने मेरे आने पर स्वयं उठकर मुझे सम्मान दिया, परंतु प्रेतों, पिशाचों से घिरा ये अघोरी बैठा रहा, मुझे प्रणाम तक नहीं किया।
3: दक्षराज ये क्या कह रहे हैं?
7: रुद्रदेव का अपमान कर रहे हैं।
3: परंतु देखो तो, रुद्रदेव कैसे शांत बैठे बैठे मन मन मुस्कुरा रहे हैं।
6: दक्ष, प्रजापतियों के भी प्रजापति बनने का इतना अभिमान मत करो, ब्रह्मा पुत्र को ऐसा अहंकार शोभा नहीं देता।
5: श्रीहरि, शास्त्रीय विधि की अवहेलना करना, नीति मार्ग को कलंकित करना और सदा स्त्री में ही आसक्त रहना क्या इसे शोभा देता है? मैं श्राप देता हूं, चारों वर्णों से पृथक ये गुरु पुत्र यज्ञ अनुष्ठानों से बहिष्कृत हो जाए, ये देवताओं के बीच बैठने के योग्य न रहे।
8: अरे षठ निर्लज्ज दक्ष, तूने स्वयं परमेश्वर को श्राप देने का दुस्साहस किया। मैं नंदी तुझे और तेरा साथ दे रहे समस्त ब्राह्मणों को इसी रुद्र तेज से श्राप देता हूं, तुम सब वेद ज्ञान से शून्य हो जाओ, भोगी बन जाओ, क्रोध मोह लोभ में फंसकर भिक्षा मांगते फिरो तुम।
9: शांत हो जाओ नंदी, शांत। हे नंदी, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, मैं ही यज्ञ फल हूं, मैं ही यज्ञ की आत्मा हूं, तो भला मुझे किसी का श्राप कैसे छू सकता है? महामते नंदी, देवी सती।
0: आज्ञा देव।
9: आइए, कैलाश लौटने का समय हो गया है।
0: जैसी आपकी इच्छा प्रभो।
5: उस दिन रुद्र मेरा तिरस्कार और उपहास करके चले गए, परंतु मेरे हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रही। रुद्र को अपने यज्ञ में आमंत्रित ना कर आज ये ज्वाला शांत हुई है।
10: तो रुद्रदेव की अनुपस्थिति का मुख्य कारण ये है। मूर्ख दक्ष, तेरे अहंकार, अभिमान और दुराग्रह ने तुझसे ये क्या करवा डाला? और तू किस ज्वाला के शांत होने की बात कर रहा है? मुझे भय है कहीं यही ज्वाला तुझे भस्म ना कर डाले, तेरा ये यज्ञ सफल नहीं हो पाएगा।
5: किसी एक के ना आने से यह सफल नहीं होगा मुनि दधीची।
0: पिताजी, क्या आप रुद्रदेव को सामान्य देवता समझते हैं? जो स्वयं यज्ञ हैं, यज्ञ के अंग हैं, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान हैं, उनके बिना यज्ञ कैसे सिद्ध हो सकता है?
10: देवी सती का कथन सत्य है। पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ के संपर्क मात्र से अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाता है। उनका इस यज्ञ में आना

0: अत्यंत आवश्यक है। परमपिता ब्रह्मा, विष्णु भगवान, आप सबको प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भी हो, रुद्रदेव को यहाँ आमंत्रित किया जाए।
1: क्षमा करें मुनि दधीची, मेरा एक निवेदन है।
0: कहिए ऋषि श्रेष्ठ भृगु, आप तो इस यज्ञ के ऋत्विज हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: किसी अनुष्ठान में किसे आमंत्रित करना है किसे नहीं, ये अनुष्ठान के यजमान का अधिकार है। यज्ञ कैसे संपन्न करना है इसकी भी स्वतंत्रता यजमान को होती है। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने को विवश करना धर्माचरण के विरुद्ध है, इससे यज्ञ भाव की हानि होती है।
0: वो किस प्रकार मुनि भृगु?
1: यज्ञ अनुष्ठान किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, ये तो आप भी मानते हैं महर्षि।
0: मानता हूँ मुनिवर।
1: उस फल की प्राप्ति के लिए यजमान अपनी इच्छानुरूप विधि विधान से यज्ञ करवाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आने से यजमान यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल या अफल से वंचित हो जाता है।

0: यज्ञ विफल हो जाता है।
1: आपकी बात का वास्तविक तात्पर्य क्या है मुनि भृगु?
0: आप मेरे यजमान दक्ष के यज्ञ में बाधा ना डालें, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने का आदेश ना दें।
1: अरे भृगु, लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप और यहां उपस्थित आप समान अन्य ब्राह्मण पथ भ्रष्ट हो गए। दक्ष के धन वैभव और आपकी पद लोलुपता ने आप सबको इस अधर्मी का चाटुकार बना दिया है। यज्ञ के विधि विधान बदल देना चाहते हैं आप? ब्राह्मणत्व की परिभाषा बदल देना चाहते हैं? तक्षराज,
2: कहिए महर्षि दधीचि।
1: यज्ञात्मा रुद्र की उपस्थिति के बिना तुम्हारा ये यज्ञ अयज्ञ हो गया है।
2: क्या?
1: जहां धर्म का नाश हुआ हो, ब्राह्मण कुल को कलंकित किया गया हो और देवाधिदेव का अपमान किया गया हो, वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अरे अधम दक्ष, तेरे प्रणाम करने पर मैंने व्यर्थ ही तुझे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे डाला। सत्य तो यह है दक्ष कि आज इस यज्ञ में तेरा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा तेरा। मुनिगणों आओ, ये यज्ञ पवित्र हो गया है।
3: देवेश, देवताओं, देवर्षियों, ये उचित ही हुआ कि क्रोधी, मंदबुद्धि और मिथ्यावादी ब्राह्मण इस यज्ञ से बाहर चले गए। अब आप सब मिलकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं।
4: अरे मेरे पति की निंदा करने और सुनने वालों, जब तक चंद्र और सूर्य हैं, तुम नरक में पड़े रहोगे। हे ऋषियों और मुनियों, तुम में धर्माचरण नहीं रह गया है, तुम्हारे मन मैले हो गए हैं। अपने स्वामी का अनादर अब मुझसे देखा सुना नहीं जाता। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं इस दक्षराज के शरीर से पैदा हुई हूँ। हे नाथ, पिता के इस कुकृत्य के कारण मैं आपको मुंह दिखाने योग्य नहीं रही हूँ। मैं अभी अपने इस शव तुल्य घृणित शरीर को त्याग दूंगी। हे नाथ, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें।
5: अरे देवी सती तो ध्यान लगाकर यही धरती पर बैठ गई हैं।
6: अरे उनके नाभि चक्र से ये कैसी योगाग्नि उत्पन्न हुई है?
5: इस योगाग्नि ने तो देवी को संपूर्ण रूप से घेर लिया है।
6: अरे उनका शरीर जलकर भस्म हो गया है। हाँ देखो,
5: देवी का शरीर जलकर भस्म हो गया। अरे देवी सती हो गई, बस बस।
7: ये देवी सती, माते, ये क्या कर डाला आपने? मैं देवाधिदेव के समक्ष कैसे जा पाऊंगा? आपके कुशल और आपकी रक्षा का भार उन्होंने मुझे सौंपा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है हम सब शिवगणों को। शिवगणों, देख क्या रहे हो? देवी सती के इन हत्यारों का नाश कर डालो।
8: शिवगणों ने सभी द्वारपालों को ध्वस्त कर दिया है।
6: अरे उधर देखो, उधर रक्षक पंक्तियों को जल के समान काटते हुए वे यज्ञ मंडप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
7: राज भृगु, शिवगणों ने तो चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। मेरे सभी रक्षक योद्धा अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हे ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए।
8: मैं अभी दक्षिणाग्नि में यजुर्वेद से आहुति डाल ऋभुओं को उत्पन्न करता हूँ। अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा, अपहता असुरः रक्षांसि वेदिषदा।
9: ऋषि भृगु ने तो आहुति द्वारा सहस्त्रों बल

0: काली देवता उत्पन्न कर डाले।
1: ये रिपु तो शिवगणों से भीषण युद्ध कर रहे हैं।
0: अरे अरे देखो देखो तो शिवगण परास्त हो भाग खड़े हुए हैं।
1: हाँ, वो देखो वो भाग रहे हैं।
2: भाग रहे हैं। अरे वो भाग गए।
3: सावधान, यहां बचे ऋषियों मुनियों देवताओं नागों, आप सब तुरंत ये यज्ञ मंडप छोड़ दें, अन्यथा आपका सर्वनाश निश्चित है।
4: और महामुनि शौनक जी, देखते ही देखते दक्षराज का यज्ञ मंडप लगभग रिक्त हो गया।
5: दक्षराज ने सिद्ध कर दिया

0: विनाश निश्चित है।
1: और महामुनि शौनक जी, देखते ही देखते दक्षराज का यज्ञ मंडप लगभग रिक्त हो गया।
2: दक्षराज ने सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार उच्च पदवी व्यक्ति को मति भ्रष्ट कर सकती है। उस व्यक्ति को धर्म अधर्म, सत्कर्म कुकर्म के भेद का ज्ञान

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

घर के तो बेटे मैं तो करता हूँ अरदास, यही दाग लगा के बेटी मन।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा। उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है,
1: नृप जब राज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया,
1: मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूलि की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ राम करिय ही जुब राजू, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं,

0: ही रहे या चला जाए। सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही, वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए देगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम हो ही जुवराज।
1: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए, सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नता पूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
0: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
1: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, अयोध्या में बधावे बजने लगे।

0: एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौशल्या ने नाना वित्तांत दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन हिय हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया, फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल तमनु। नाथ, उचित तो ये था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते। नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुषु होई सो करो गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
0: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुमही जुवराजू। राम करहु सब संयम आजू जौं विधि कुशल निबाही काजू।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे, उधर विघन मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिन ही सुहायन अबध बधावा चोर ही चांद ने रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकही पराई विभूति, किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
2: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख असमन मोरे। अरे कहते क्यों नहीं? राम, राजा, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
3: कत सिख दे हमई को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेसु देई चुब राजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो? देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलो की मोर मनु छोभा। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस ना हो हमारे। रानी तुम्हें तो तोशक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
2: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ावाऊं तोरी।
3: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं।
2: प्रियवादिनी सिख दीना हूँ तो ही।

0: कि राम पुत्र और सीता वधू हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है?
1: एक ही बार आस सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी तुझी। फोर जोग कपारू अभागा, भले हो कहत दुख रव रही लागा। अरे माई, तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं। मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरू बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हम ही कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़े चूक हमारी।
0: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है?
1: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हो। पर चलो, मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूं, इसीलिए कहती हूं। रानी, तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारी हो, सो ठीक ही है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रूप होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना चल के वही सूरज कमल को चलाकर भस्म कर देता है।
0: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
1: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है।
0: क्या
1: उपाय की पाड़ लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज फस जान न हो राव। लेकिन रानी, मन मलीन मुंह मीठ नृप, रावर सरल स्वभाव।
0: मंथरा,
1: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए माई, कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो। वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
0: लेकिन राजा?
1: हाँ, राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहां ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
0: लेकिन राम का राज तिलक हो?
1: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है। ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
0: आगे की क्या बात मंथरा?
1: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
0: मंथरा, तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता। तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
1: कहा पूछो हूं? तुम अब हो न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते, और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूं, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूं तो भगवान मुझे दंड देगा।
0: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
1: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का भी

0: मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भयहू दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा
0: रानी, धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा, तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी। मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ। जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही ये कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
2: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सवति सेवकाई।
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी, अस कस कहूं माने मनुना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। पर कह देती हूं, जे ही राउर अति अनभलता का, सोई पाइए यहू फलु परिपाका। स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न दिन में चैन है, न रात को, न भूख लगती है, न नींद ही आती है।
1: मंथरा, तब
0: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा, भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच
0: रानी, अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो हैं।
1: परम कूप तो वचन पर सकूं पूत पति त्याग। जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। तू कह तो सखी।
0: स्वामिनी, सुद अही है कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूं आज जुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को बनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा,
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना। भूपति राम सपत जब करी, तब मांगहू जे ही बचन न डरे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी, तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय, तू बहुत ही बुद्धिमान है। संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरियाली।
3: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कैकेयी

0: அந்தத்து கத்வா சாஞ்ச சமய சானந்த நிருப்பு கயவு கேகையி கே லேக்கின் கோப பவன் சுனி சகுச்சே உராவு டர் கே மாரே ராஜா கே பயர் ஆகே நகிம் உட்டே கேசி விடம்பனா ஹே ஸ்வயம் தேவராஜ் இந்திர ஜின் கீ புஜாவும் கே பல் பர் ராட்சசோ சே நிர்பய ஹோகர் நிவாஸ் கர்த்தா ஹே ஔர் சம்பூர்ண ராஜா லோக் ஜின்கா ருக் தேக்தே ரஹ்தே ஹே வஹீ ராஜா தஷரத் ஸ்திரீ கா க்ரோத் சுன்கர் சூக் கே சபய நரேசு பிரியா பஹி கயவு தேகி தசா துக்க தாருண் பயவு ராஜா நே தேகா கைகை ஜமீன் பர் படி ஹே புரானா மோட்டா கப்டா பஹனே ஹுவே ஷரீர் கே சபீ ஆபூஷண் உதார் கர் ஃபேங்க் தியே ஹே ஸ்ரோதாவோ உஸ் துர்புத்தி கைகேயி கோ யஹ குவேஷ் கைசா லக் ரஹா தா மானோ பாவி விதவாபன் கீ சூச்சனா தே ரஹா ஹோ किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
1: प्राण प्रिय तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केही जम चैलीन्हा, कहु केही रंग कही करौ नरेसु, कहू कही नृपही निकास हो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूं। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, सुनै ने तुम मंगल साज सजा लो।
2: मांगु मांगु पै कहो पिए, कबहू न देहु न लेहु। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
1: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांगी मकुले हो। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
2: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
1: अच्छा
2: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी।

0: मनोरथ सुरतरू फूला भरत करिनी जिमि हाथे समूल अब सुझार तीन सी अचल विपत्ति कह नहीं आह क्या होने को था और क्या हो गया।
1: भरत तो कोई राउर पूत न हो ही आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे वर देना, जाने हूँ ले ही मांगे चबेना। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? ये विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकालकर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहु स्वभाव, राम मात कछु कहे उन्हें काहू। मैं सब की तो ही बिन पूछे ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। अज हृदय जरत ते आज परिहास इस साचे हु साच। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा? प्रिय हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके भर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आहीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाही।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मीच उसीस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: जनी दिन कर कुल हो सी कुठारी, मांग मात अभी देऊ तो ही, राम बिरह जन मार असी मोही, राख राम कहूं जही तही भाथी, नाही ते जरही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम के ही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी ना लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो ही नीक लाग करूं सोई, लोचनोट बैठू मुगोई, मैं तेरे आगे हौथ जोड़ता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे कुछ न कहना। अरिया भागनी, अंत में तू पछताएगी कि जो तू ताहत के लिए गाय को मार रही है। हा राम, हा राम। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे, भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक हैं, सद्गुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। एक माता एक पिता

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति पिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम जो गुप्त है बिरला जानी कोई, साधक साधे साध न पावे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।